सोमो 11 जुलाई को 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने यह ऐलान बुध को किया। तोनेगावा ने वहां प्रोफेसर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी हैं। तोनेगावा सुसोमो ने 1987 में इस बात से पर्दा उठाकर नोबल इनाम जीता कि जिस्म किस तरह एंटीबॉडीज तैयार करता है, जो एक मुदाफियती अमल है। तोनेगावा वस्ती जापान में आईची प्रिफेक्चर के शहर नागोया में पैदा हुए। उन्होंने क्योटो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और स्विट्जरलैंड के बासिल इंस्टीट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी में तालीम हासिल की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट तोनेगावा ने जीनियाती सतह पर मुदाफियती निज़ाम के तरीक़ेकार का खोज लगाने पर काम किया। उन्होंने एंटीबॉडी तनवो की देरीना गुत्थी को सुलझाकर नुमाया तवज्जो हासिल की। उन्होंने दरियाफ्त किया कि मुदाफियती निज़ाम वायरस, बैक्टीरिया और दीगर पैथोजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की वसी अकसाम पैदा करता है। नोबल इनाम जीतने के बाद तोनेगावा MIT में दिमागी अफ़आल का खोज लगाने लगे। अपनी मौत से कबल के सालों में वो याददाश्त के तरीक़ेकार जैसे मौजूआत पर तहकीक में मसरूफ़ थे।

0: समुद्री खुराक से लुत्फंदोज होने के लिए मछली मंडी के करीब एक रेस्तरां में दाखिल हुई हैं।
1: तो आइए सबक नंबर 20 का मकालमा सुनते हैं।
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
0: मियां बावर्ची से कहती है,
2: ओसुसुने वा नान देसु का?
1: आपकी सिफारिश क्या है?
0: बावर्ची मेन्यू पर एक जगह उंगली रखकर जवाब देता है,
3: कोनो स्पेशल काइसेन डों गा ओसुसुमे दा यो।
1: मैं स्पेशल सी फूड बाउल तजवीज करूंगा।
3: इकुरा तो उनी गा तप्पुरी हाइट्टेरु यो।
1: इसमें सामन के अंडे और समुद्री खारपुश काफी शामिल है।
0: मियाँ अपने लिए तजवीज करदा पकवान मुंतखिब करती है।
2: जा सोरे कुदासाई।
1: अच्छा तो फिर ये दीजिए।
0: ताम भी वही पकवान पसंद करती है।
4: वतशिमो।
1: मुझे भी।
4: आ, वसाबी वा इरे नाई दे कुदासाई।
1: और हाँ, वसाबी मत डालिए।
0: बावर्ची दोहरा कर तस्दीक करता है,
3: वसाबी नुकी ने।
1: वसाबी के बगैर ठीक है ना?
0: फिर वो मियाँ से मुखातिब होता है,
3: सोचिरा वा?
1: और आपके लिए?
0: मियाँ जवाब देती है,
2: वतशि वा वसाबी ओ तकसान इरे दे कुदासाई।
1: मेरे प्याले में बहुत सी वसाबी डालिए।
0: खाइसेन डोंग के प्याले में चावलों के ऊपर मुख्तलिफ अकसाम की समुद्री खुराक होती है।
1: और वासाबी एक जापानी चटनी है जो न सिर्फ जबान को तेज लगती है बल्कि नाक में भी चुभती है। ये कच्ची मछली के साथ अक्सर खाई जाती है। ताम के बरखिलाफ मियाँ को शायद वासाबी बहुत पसंद है।
0: तो आइए आज का मुकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
2: ओसुसुमे वा नान देसु का?
3: कोनो स्पेशल काइसेन डों गा ओसुसुमे दा यो। इकुरा तो उनी गा तप्पुरी हाइट्टेरु यो।
2: जा सोरे कुदासाई।
4: वतशि मो। आ, वासाबी वा इरे नाई दे कुदासाई।
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: आज के सबक का कलीदी जुमला है, वसाबी मत डालिए।
4: वसाबी वा इरे नाई दे कुदासाई।
0: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए अपने खाने या पीने की चीज में कोई चीज ना डालने की दरख्वास्त कर सकते हैं।
1: वसाबी यानी तेज जापानी चटनी और इरे नाई दे कुदासाई का मतलब है मत डालिए। आज का नुक्ता, किसी को अपने खाने या पीने में कोई चीज न डालने की दरखास्त करने के लिए फेल की नाई शक्ल के बाद दे कुदासाई लगाएंगे।
0: अनवर साहब, नाई शक्ल की कुछ वजाहत करें।
1: नाई शक्ल फेल की मुख्तलिफ शक्लों में से एक है जिसका अख्ताम नाई पर होता है। ये नफी का सीगा है। अगर आप खाने पीने की किसी चीज का ऑर्डर करते वक्त उसमें कोई चीज न डलवाना चाहें तो फेल इरेरू यानी डालना की नाई शक्ल इरे नाई इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ दे कुदासाई लगाने से ये बनेगा इरे नाई दे कुदासाई। किसी भी नापसंदीदा चीज़ के बारे में मना करने के लिए उस चीज़ के नाम के बाद वा, फिर फेल की नाई शक्ल और उसके बाद दे कुदासाई लगाया जाएगा। ये किसी काम से रोकने की दरख्वास्त है।
0: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
5: इरे नाई दे कुदासाई। わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
0: じいさめ、やきねん、あぷねじゅむろこうむでぎせどらりやほうが。
1: おらべ、カフェやレストランめほねわらまかるますにえ。がはく、ウェトレスあぷねましゅるうめこいちいずなだらねかかえたへ。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: あ、いすまかるめきとしり。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
0: エクオレンジジュース。バフマッダリエ。
1: オレンジジュース、やにオレンジジュース。一つ、やにエク。氷かまたべバフ。チュンケガハクバフネヒドルワナチャータイスリウスネカハ。氷は入れないでください。やにバフマッダリエ。
4: かしこまりました。
0: जी, समझ गई।
1: ये समझ गया या समझ गई कहने का बहुत ज्यादा शाइस्ता अंदाज है।
0: तो अब सुनिए और दोहराइए।
5: कोरी वा इरे नाई दे कुदासाई। कोरी वा इरे नाई दे कुदासाई।
1: अब कैफे या रेस्टोरेंट के अमले को अपने ऑर्डर किए हुए खाने पीने में कोई और चीज डालने से मना करने की मशक करते हैं।

0: फर्ज करें आप सलाद पर ड्रेसिंग नहीं डलवाना चाहते, तो अमले से क्या कहेंगे? ड्रेसिंग की जापानी है
1: ड्रेसिंग, ड्रेसिंग।
0: और कोई चीज ऊपर से छिड़क कर डालने को कहते हैं काकेरू। इसकी नई शक्ल होगी
1: काकेनाई, काकेनाई।
0: तो सामीन कोशिश करें
2: ड्रेसिंग वा काकेनाई दे कुदासाई, ड्रेसिंग वा काकेनाई दे कुदासाई।
0: और अमले से ये किस तरह कहेंगे कि आपके लिए खाना बनाने में मिर्च ना इस्तेमाल करें? मिर्च को कहते हैं
1: तोगराशी, तोगराशी।
0: इस्तेमाल करना ये है स्काऊ, और इसकी नई शक्ल है
1: स्कावानाई, स्कावानाई।
0: तो जुमला बनाकर देखें
3: तोगराशी वा स्कावानाई दे कुदासाई, तोगराशी वा स्कावानाई दे कुदासाई।
2: प्रोग्राम की वेबसाइट पर कई फेल और उनकी नई शक्ल की मिसालें मौजूद हैं।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज के जुमला मकालमे से मियाँ का जुमला है, इसे इसी तरह याद कर लें।
4: ओसुसुमे वा नान देसु का?
0: ओसुसुमे के मायने है सिफारिश। अगर आप किसी रेस्टोरेंट के अमले से पूछेंगे कि ओसुसुमे वा नान देसु का, तो अमला मुमकिन तौर पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश या फिर अपने रेस्टोरेंट की खास फखरिया डिश की सिफारिश करेगा।
2: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
5: ओसुसुमे वा नान देसु का,
6: ओसुसुमे वा नान देसु का,
7: ओसुसुमे वा नान देसु का।
2: जी सामईन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
1: ओसुसुमे वा नान देसु का।
0: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
4: ओसुसुमे वा नान देसु का?
8: कोनो स्पेशल काइसेन डों गा ओसुसुमे दा यो, इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइट्टे रु यो।
4: जा सोरे कुदासाई, वातासी मो वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
8: वासाबी नुकी ने, सोचिरा वा?
4: वातासी वा वासाबी ओ ताकसान इरेते कुदासाई।
9: क्विशिंबो काइटो नी ओमाकासे।
2: और अब खानों के शौकीन काइटो के मशवरों का कॉर्नर। आज का मौजू होकाइडो की समंदरी खुराक है।
0: होकाइडो तीन समंदरों, बहरे जापान, बहरे ओखोत्स्क और बहरुल काहिल में घिरा हुआ है, चुनाचे यहाँ माहीगीरी बहुत आम है।
2: केकड़े, स्क्विड, सालमन और सालमन के अंडे यहाँ वाफे मकदार में पाए जाने वाली समंदरी खुराक की कुछ मिसालें हैं।
0: होकाइडो की समंदरी खुराक जापान भर में मशहूर है और डिपार्टमेंट स्टोर्स में अक्सर होकाइडो बाजार लगाए जाते हैं। होकाइडो की समंदरी खुराक का जायका बैरून मुल्क भी मशहूर है, खुसूसन सदफी मछली अपनी बुलंद मकबूलियत के बायस बड़ी मकदार में बरामद की जाती है।
2: ये कच्ची भी खाई जाती है और खौल के साथ आग पर भून कर भी।
0: होकाइडो की बंदरगाहों के करीबी इलाकों में कच्चे केकड़े और झींगे जैसी ताज़ा मकामी समंदरी खुराक से लुत्फंदोज हुआ जा सकता है। ताज़ा शिकार किए गए स्क्विड और समंदरी खारपुश्त भी लजीज होते हैं। अगर आप होकाइडो का सफर करें तो मौसम की समंदरी खुराक से जरूर लुत्फंदोज हों।